चिंतारा चिंतीर सारखे ठिका हे राम तीर नरुमयालू सारा सारा लेव डोरी बातेर देरब माया जाऊ दाराय कातेर नरुमयालू कला पारी मोमा।